ने जाना परिजो सो तमना रे यो कांतम आशाय करे कन्या बिगी रहे है तना सब आए है तना रामी ता गए रंगे सब

0: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल कैलुङ समाचारको सहयात्री।

0: আপনি নেই জাগির খানে মৌকা তো আকুছ নি তর
1: তর সর কি সোচের বসনি হই না মারি জাগির কো অবসর আকুছ বনি গরে খাই হাল হই
0: আপনি নেই অব খানা তো হুনতো নি তর কি গর্নে মোটরসাইকেল নাই চলন জানে কো হুনু পর্ছ ভনের ভন্দিও তো সকি গনে
1: এরে এরে ইনকা মোটা বুদ্ধি জাগির খানা পঞ্চ শিব চাইন মাটি ভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার জানে মারি কার মোটর সাইকেল স্কুটার শিখনে নি ওই না
2: হতনি দোলখা জেলা ভীমেশ্বর নগরপালিকা ওড়া নম্বর ৬ স্থিত আর্মিক ব্যারেক নজিকই রয়েকো মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারমা বিশেষ ছুটকা সাথ কার মোটরসাইকেল র স্কুটার দক্ষ তথা অনুভবী প্রশিক্ষক দ্বারা শিকাইন্ছ
3: সাথেই ইহা আপনি কার মোটরসাইকেল র স্কুটার পনি লাগি ট্রায়াল শিখন সকিনে ভাইকোলে ইচ্ছুক ব্যক্তিহরুলে আজই সম্পর্ক গর্নু হোলা দোলাখা জিল্লাকো একমাত্র আফ্নে ট্রায়াল সেন্টার ভাইকো মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার
2: বিস্তারিত জানকারিকা লাগি প্রোপাইটর পাসং শেরপা সম্পর্ক নম্বর 9865 46 19 26 র গেলসাং শেরপা 9816 830 107
3: মাতৃভূমি ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টারকো সম্পর্ক কার্ডে পেট্রোল পম্পকো ছেউ পহিলে বাজার সুরুম রহেকো ঘরমা সরেকো ছ মাতৃভূমি নেপাল ড্রাইভিং ট্রেনিং সেন্টার চরিকোট দোলাখা
4: छोरीको चिना टिपन बनाउनु थियो मेरो पनि चिना हेर्नु पर्ने थियो अनि जडीबुटी पनि चाहिएको थियो यी सबै कुरा कहाँ पाइन्छ होला तिमीलाई थाहा छ अनि अस्ति तिमी हात हेर्ने पनि कुरा गर्दै थियौ
5: यी सबै कामका लागि त पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्दबाट ज्योतिष विद्या सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त गर्न सफल हुनुभएका लादुक घर भएका ज्योतिष नकुल गजुरेलाई सम्पर्क गर्नु पर्छ नि त
3: के तपाईँ ज्योतिष शास्त्रमा विश्वास गर्नुहुन्छ यदि त्यसो हो भने चरीकुट सातो बाटो कृषि बजार स्थित ज्योतिष नकुल गजुरेललाई सम्झिनुहोस् यहाँ हात हेर्ने चिना टिपन बनाउने झारफुक गर्ने आवश्यक परेका जडीबुटी मोहनी र छारे रोग पनि निको पारिन्छ सम्पर्कको लागि ज्योतिषी नकुल गजुरेल 9844-46-88-62 9844-46-88-62 ध्यान दिनुहोस् समृद्ध सक्षम र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणको आधार राष्ट्रिय आर्थिक गणना 2082 सञ्चालन भइरहेको छ
2: यही मिति 2083 साल वैशाख 2 गतेदेखि असार 7 गतेसम्म जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय दोलखाबाट खटिनुभएका गणकहरू तपाईहरूको उद्योग पसल व्यवसाय विद्यालय कार्यालय तथा सबै प्रकारका संघ संस्था र प्रतिष्ठानहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा पुगिरहनु भएको छ
3: आउनुहोस् आफ्नो व्यावसायिक क्रियाकलापको सही पूर्ण र यथार्थ विवरण दिई यस राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाऊ तपाईले प्रदान गर्नुभएको सम्पूर्ण जानकारी तथ्याङ्क ऐन 2079 अनुसार पूर्ण रूपमा गोप्य रहनेछ
2: अर्थतन्त्र मापनको आधार आर्थिक गणना समृद्ध नेपाल निर्माणका लागि आर्थिक गणना आर्थिक गणनामा कोही नछुटौ
6: नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय तथा जिल्ला आर्थिक गणना कार्यालय दोलखा थप जानकारीको लागि टोल फ्री नम्बर 1178
2: मुसाले पनि कति दुःख दिएको अस्ति बनाएको नयाँ नयाँ सिरक डस्न काटेर धुजा धुजा पारेछ कागज पत्र पनि उस्तै पारेछ
3: अरे यति सानो कुरामा कति बरबराएको दिदी आदि चरीकोटमा गएर स्टिल दराज बाकस लिएर आउनु छैन
2: हो र बाबु चरीकोटमा कहाँनिर पाउँछ नि
3: ल दिदी पनि त्यही भालुखोला त्रिपुरा स्कूलबाट सिधा माथि जानुहोस् न, त्यहाँ भीमेश्वर स्टील फर्निचर छ। त्यहाँ सबै डिजाइनको घरको लागि अफिसको लागि चाहिने स्टीलका दराज पाउनुको साथै सिरक डस्ना राख्ने बाकस पनि पाइन्छ र पुरानो स्टील दराज पनि मरमत गरिन्छ।
2: हजुर, आजै भीमेश्वर स्टील फर्निचरलाई सम्झनुहोस्। यहाँ घरैसी स्टील दराज, अफिसका लागि चाहिने सबै डिजाइनको स्टील दराजहरू पाउनुको साथै सिरक डस्ना राख्ने बाकस पनि सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
3: प्रोप्राइटर भीम बहादुर थामी, सम्पर्क नम्बर 9864000825 र 9814241402। भीमेश्वर स्टील फर्निचर, सिम्पनी जाने बाटो वन कार्यालयको छेउमा चरी